0: At 2XX98.3,
1: your support is important to us.
0: Become part of your community station
1: by subscribing,
0: donating,
1: or volunteering.
0: Visit us at 2xxfm.org.au.
2: You have been listening to GEM, Gender Equity Matters. GEM, a dedicated program on gender issues, because gender equity matters. GEM, where we cover local, national, and international gender equity matters.
3: GEM. GEM.
4: आप जयंती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जेंडर इक्विटी मैटर्स सुन रहे थे पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर शाम के 7 बज रहे हैं रेडियो हार्मनी पर मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता
5: दिस इज हार्मनी

0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज के कार्यक्रम में हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2026 यानी वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2026 के बारे में बात करेंगे। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के आह्वान से करते हैं।

इस भजन को गाया था लता मंगेशकर और दिलराज कौर ने। इसका संगीत था जयदेव का दिया हुआ और इसे गाया था फिल्म आलाप में। आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है। पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं हूं आपका प्रस्तुतकर्ता अरविंद गुप्ता। मित्रों, जून के महीने में कुछ बड़े खास फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, तो उनका चलते चलते एक बड़ा छोटा सा जिक्र कर लें। 22 जून के आसपास अंबुबाची मेला होता है, जो गुवाहाटी आसाम में लगता है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल होता है 23 से 27 जून तक, ये लेह और लद्दाख में होता है। साओ जुआओ फेस्टिवल, ये 24 जून को गोवा में होता है। और जगन्नाथ रथ यात्रा, ये 26 से 27 जून पूरी उड़ीसा में लगता है। सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, फ्रेंड्स, इट नॉर्मली फॉल्स ऑन द 21st ऑफ जून। आर थीम हैज बीन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो जॉइन अस फॉर ए प्रैक्टिकल सेशन एंड क्वेश्चन एंड आंसर और जस्ट लिसन टू द टॉक। सो फार वी हैव हेल्ड टू सेशंस, टू डिफरेंट ओकेजन्स। ए थर्ड इज एन ऑनलाइन टॉक, योगा बियॉन्ड आसन, What is yoga really? And this talk is by Alan Good, director of Yoga Mandir in Canberra, and will be on Thursday, 18th of June 2026, from 8 to 9 p.m. It's a free session, although booking is essential. So please go to trybooking.com and register yourself. The code is DMFEV. For a Zoom link, which is available on the Try Booking site when you register. Or you can contact iWomen's Network, all one word, at gmail.com. And more information is available on our webpage, www.integratedcultures.org. And friends, we acknowledge the support of the ACT government, yoga practitioners, People Powered Radio 2XX, Radio Harmony, Wednesdays 7 to 8 p.m. Radio Gender Equity Matters, Wednesdays 6 to 7 p.m. Tamil Kumbalam, Amar Sanskriti, Har Eye Link,

and go equal. तो आज का हमारा मुद्दा है World Elder Abuse Awareness Day, जो कि पड़ता है 15 जून को, लेकिन ये फिर पूरे हफ्ते चलता है, तो 15 से लेकर 22 जून तक World Elder Abuse Awareness Week मनाया जाता है. The purpose of WEAAD, World Elder Abuse Awareness Day, is to provide an opportunity for communities around the world to promote a better understanding of abuse and neglect of older persons by raising awareness of the cultural, social, economic and demographic processes affecting elder abuse and neglect. मुझे फिल्म एक फूल दो माली के गाने की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं. वे वाकई उन भूमिकाओं को दर्शाती हैं जो हमारी उम्र बढ़ने और हमारे बच्चों को के व्यस्क होने के साथ बदलती हैं. यह एक उम्मीद है कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी देखभाल करेगी. और ये पंक्तियां हैं, आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं.

ये गीत था फिल्म वीर ज़ारा से और इसे गाया था लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ ने। इसका ओरिजिनली संगीत दिया था लेट मदन मोहन ने और रिक्रिएट किया संजीव कोहली ने और बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी धुन है और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। So friends, come and celebrate International Day of Yoga with us, which usually falls on the 21st of June, but we at Integrated Women's Network have organized 3 different sessions, out of which 2 have already been held. A third one in our series Unity in Diversity will take place on the 18th of June. It is a talk, Yoga Beyond Asana. What is yoga really? Alan Good is the director of Yoga Mandir in Canberra and will host this talk on Thursday, 18th of June, from 8 to 9 p.m. It is online. Cost is free, but booking is essential. So please head to trybooking.com. And the code to get the Zoom link is DMFEV, and you get that link as soon as you register. You can also contact iwomensnetwork@gmail.com. And for all our programs, we acknowledge the support of the ACT government, yoga practitioners, People Powered Radio, Radio Harmony, Radio Gender Equity Matters, Tamil Kummalam, Amar Sanskriti, Her iLink, and Go Equal. मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हार्मनी, जो हर बुधवार को शाम 7 से 8 बजे तक प्रसारित होता है, पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर। मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता। आज हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इट स्टार्ट्स ऑन द 15th ऑफ जून और पूरा हफ्ता चलता है, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस वीक, सो ये 22 जून तक चलेगा। तो वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार की कई रूपों में होता है। यह वित्तीय, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, यौन या सामाजिक हो सकता है। वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार एक बार या कई बार हो सकता है और इसकी गंभीरता सूक्ष्म से लेकर चरम तक हो सकती है। इसमें विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों में से एक या उनका संयोजन शामिल हो सकता है। ज्यादातर मामलों में वृद्ध व्यक्ति के किसी परिचित द्वारा ही वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें से 2/3 दुर्व्यवहार करने वाले व्यस्क बच्चे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली दुर्व्यवहार करने वाले परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार या मित्र भी हो सकते हैं। वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार सभी लिंगों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करता है। हालांकि दुर्व्यवहार महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। SRV से मदद मांगने वाले 2/3 लोग महिलाएं ही हैं। सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदाय, आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदाय और LGBTQI+ समुदाय इसके अतिरिक्त असुरक्षित हैं। साथ ही ग्रामीण और क्षेत्रीय समुदायों में रहने वाले वृद्ध लोग भी। बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार से कौन प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की व्यापकता के सबसे हालिया अध्ययन में पाया गया कि 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के 14.8% लोगों ने पिछले 12 महीनों में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के कम से कम एक मान्यता प्राप्त रूप का अनुभव किया है। इससे पता चलता है कि 1,60,000 वृद्ध
विक्टोरियाई हर साल बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं। जिस स्तर पर वे शोधकर्ताओं को पहचानना चाहते हैं, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं में भी वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि कई देशों में आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिससे विक्टोरिया भी अछूता नहीं है, क्योंकि हमारा समुदाय बूढ़ा हो रहा है। सन 2046 तक 60 प्लस आयु वर्ग के विक्टोरियाई लोगों की संख्या लगभग 60% बढ़कर 2.3 मिलियन से अधिक हो जाने की उम्मीद है, जो कि लगभग 25% आबादी के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होगा। असुरक्षित आवास और बेघर होना ऐसे कारक हैं जो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार में बहुत योगदान देते हैं, चाहे वे खुद बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए हों या उनके करीबी लोगों द्वारा।

0: दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बड़ा नॉस्टैल्जिक सा गाना है, गाया है भूपिंदर ने, और इस फिल्म थी मौसम जो 1976 में आई, और इसके गाने वाले थे भूपिंदर सिंह, बोल लिखे थे गुलजार ने, संगीत दिया था मदन मोहन ने, और इस फिल्म में काम किया था संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर ने। और ये गीत वाकई हमारी हिंदुस्तानी जीवन को फिर से एक बार याद दिला देता है, जाड़ों की गर्मियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, वो भीनी भीनी सी गर्मी जो दोपहर को होती है, अपनी चारपाई बिछाई पेड़ के नीचे औंधे पड़े सोते रहे, कितनी खूबसूरत एक याद ताज़ा हो गई। फ्रेंड्स, वर्ल्ड एल्डर अब्यूस अवेयरनेस डे ऑन 15 June इज़ अ चांस टू raise awareness of the many types of abuse that older people experience. It is also a chance to highlight the many initiatives and services that are available to help people prevent and respond to abuse in all its forms. And it is a chance to build community and to celebrate the contributions older people make to our lives. In our society, we don't really hear from older people enough. So this year, please, if you know somebody who is older and can provide us with a message, with their story, if you are yourself over 50, over 60, over 70, even 80, 90, or even 100, we would like to hear your story. What is it like to be your age at this time in history? What are your experiences, good and bad, your ambitions, your hopes, and even your fears? What have you learned, and what advice do you want to share? Please write in to us at harmonyfm2xx@gmail.com.
1: People Powered Radio,
2: 2XXFM 98.3,
1: streaming online at 2xxfm.org.au.

0: World Elder Abuse Awareness Day and World Elder Abuse Awareness Week. ये म्यूजिक वीडियो था प्रोड्यूस किया था TNF फिल्म्स ने. इस वर्ष के विश्व दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र का विषय है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंशन वर्क. जागरूकता बढ़ने के बावजूद कई देशों में अभी भी विश्वसनीय अलग अलग डेटा का अभाव है और कर्मचारियों की कमी या पर्याप्त परीक्षण की कमी दुर्व्यवहार और उपेक्षा के लिए उच्च जोखिम वाली स्थितियां पैदा कर रही है. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा समर्थित एक अध्ययन से पता चला है कि पिछले वर्ष लगभग 64% संस्थागत कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार करने की बात स्वीकार की, जो प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है. इस वर्ष का विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस WEAAD दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में वृद्धों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करेगा. जबकि अधिकांश वृद्ध लोग समुदाय में रहते हैं, संस्थागत देखभाल कई लोगों के लिए एक वास्तविकता है. जैसे जैसे वैश्विक वृद्धावस्था के साथ संस्थागत देखभाल की आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे निवासियों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करने की चिंताएं भी सबसे महत्वपूर्ण होती हैं. वैश्विक वृद्ध आबादी और संस्थागत देखभाल पर बढ़ती निर्भरता के साथ निवासियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना पहले से कहीं अधिक जरूरी है.
1: Hello everybody, my name is Glinzy from the Day Program. We're here to do a song for you with the ADA team.

World Elder Abuse Awareness Day. This was a song by the New York Seniors Center. दोस्तों बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को संबोधित करना है 2019 और 2030 के बीच 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 38% बढ़कर 1 बिलियन से 1.4 बिलियन हो जाने का अनुमान है जो वैश्विक स्तर पर युवाओं की संख्या से अधिक है और यह वृद्धि विकासशील दुनिया में सबसे अधिक और सबसे तेज होगी और यह मानते हुए कि वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें मानव अधिकारों का क्षेत्र भी शामिल है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार एक ऐसी समस्या है जो विकासशील और विकसित दोनों देशों में मौजूद है फिर भी आमतौर पर वैश्विक स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग कम होती है प्रचलन दर या अनुमान केवल चुनिंदा विकसित देशों में मौजूद हैं 1% से 10% तक हालांकि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की सीमा अज्ञात है लेकिन इसका सामाजिक और नैतिक महत्व स्पष्ट है इस प्रकार यह एक वैश्विक बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करता है जो वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित हो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार को परिभाषित करने उसका पता लगाने और उसका समाधान करने के तरीकों को सांस्कृतिक संदर्भ में रखा जाने चाहिए और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जोखिम कारकों के साथ विचार किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए कुछ पारंपरिक समाजों में वृद्ध विधवाओं को जबरन विवाह के लिए मजबूर किया जाता है जबकि अन्य में अलग थलग वृद्ध महिलाओं पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता है स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण से जब तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा क्षेत्र दोनों ही समस्या की पहचान करने और उससे निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं होंगे तब तक बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का निदान कम ही किया जाएगा और इसे अनदेखा किया जाएगा

मित्रों, आज हमने आपको वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे एंड वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस वीक के बारे में चर्चा की आपके साथ। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम और जो हमने संगीत पेश किया पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट, ऑन 18th June 2026 फ्रॉम 8 to 9 PM इंटीग्रेटेड वुमेन्स नेटवर्क इज होस्टिंग द योगा टॉक Beyond Asana, What is Yoga Really? And it is by Alan Good, Director of Yoga Mandir in Canberra. This is online. The cost is free, but booking is essential. Go to trybooking.com and the code is DMFEV. You will get the Zoom link as well as you will be able to register yourself. It's fast coming to 8 p.m., friends, and I will have to bid you good night. It was a pleasure to have your company. हम अगले बुधवार को फिर आपसे मिलेंगे। Next week we will cover another major topic, probably World Refugee Day, which falls on the 20th of June. तब तक के लिए अरविंद गुप्ता का प्रणाम। Stay tuned for Latino American Ahora that follows Radio Harmony.